सब वॉशिंग मशीन में 6 किलो सर्फ मैट्रिक एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ शर्तहरू लागू हुने छन् ग्लोबल नंबर 1 गूगल टीवी ब्रांड टीसीएल टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स

0: सदस्यहरूबाट प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धमा,
1: एकाइ प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धमा
0: र विविध
1: एकाइको साधारण सभाका कार्यक्रम स्थान र मिति, एकाइ नम्बर एक चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9, 10 र 11, मिति 2083 साल कार्तिक 10 गते मंगलबार बिहान 11 बजे, स्थान गगनचुम्बी आधारभूत विद्यालय अरुन्थान चैनपुर नगरपालिका 8 संखुवा सभा।
0: एकाइ नम्बर 2 चैनपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, मिति 2083 साल कार्तिक 12 गते बिहिबार बिहान 11 बजे, स्थान चैनपुर नगरपालिका 4 र 5 को संयुक्त कार्यालय सभाहल पोखरी बजार चैनपुर नगरपालिका 4 संखुवा सभा।
1: एकाइ नम्बर 3 चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6, मिति 2083 साल कार्तिक 14 गते शनिबार बिहान 11 बजे, स्थान दिलकुमारी सभा भवन चैनपुर नगरपालिका 6 संखुवा सभा।
0: एकाइ नम्बर 4 चैनपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7, मिति 2083 साल कार्तिक 16 गते सोमबार बिहान 11 बजे, स्थान दिलकुमारी सभा भवन चैनपुर नगरपालिका 6 संखुवा सभा।
1: एकाइ प्रतिनिधि साधारण सभा, मिति 2083 साल कार्तिक 19 गते बिहिबार बिहान 11 बजे, स्थान दिलकुमारी सभा भवन चैनपुर नगरपालिका 6 संखुवा सभा। सम्बन्धित ओडाहरूका शेयर सदस्यहरूले तोकिएको स्थानमा हुने साधारण सभामा उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 98525 1191, 029570191, 98422 92 3

चाड़ पर्व में यूरो पेंट प्रस्तुत करद रंगीन घर बरसिंग उपहार रु 50,000 को यूरो पेंट को खरीद में पाने लकी ड्र कूपन अनि पाने 3 वर्ष एसी 1 टन डबल

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 10 AM अहिले बिहानको 10 बज्यो।

बोट जति पकाए नि मान्दिन खाना छि के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: It's 5 PM
3: अहिले अपराह्नको 5 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण
1: 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै
2: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।

कति पकाए नि मान्दिन हौ साना छी के छ र मेरो खोटा। नमस्कार, म गायक अनन्त घिमिरे, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लेख बेसीको धुन रेडियो अरुण, सधैँ सुन्नुहोस् है।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 9 PM
3: अहिले रातको 9 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 PM
3: अहिले रातको 10 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाई सँगै
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।